फेरे भोज दियां ने शाइयां खोर कटावा चार्च फेरे भोज दियां ने शाइयां खोर कटावा मारे उन्हां दी कोलो कोई गा बजूगा डावा डावा मारे उन्हां दी कोलो कोई बचूगा डावा।

जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत गगन दमामा बाजेओ परयो निशानै काओ खेत जो मांडेओ सूरमा अब जूजन को दाओ सो कहो टल से विया अहने सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पातिसा मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातिसा सिर साहां दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहु सतनाम वाहे गुरु साहिब।

द्वार। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार, थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया सुमाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जेहो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तीर्थ नावा जे तिस पावा, विण पाने के नाए करी, जेती सिरठ उपाई, वेखा विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चलै सब कोए, चंगा नाउ रखाए कै, जस कीरत जगले। जे तिस नदर ना आवई, ता बात ना पुछै के, कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोए ना सुझई, जे तिस गुण कोए करे। सुनिऐ सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिऐ धरत धवल आकाश, सुनिऐ दीप लो पाताल, सुनिऐ पोह न सकै काल, नानक भगतां सदा विगास, सुनिऐ दुख पाप का नाश, सुनिऐ ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिऐ मुख साला हनुमंद, सुनिऐ जोग जुगत तन भेद, सुनिऐ शास्त सिमरत वेद, नानक भगतां सदा विगास, सुनिऐ दुख पाप का नाश, सुनिऐ सत संतोख ज्ञान, सुनिऐ अठसठ का इशनान, सुनिऐ पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिऐ लागै सहज ध्यान, नानक भगतां सदा विगास, सुनिऐ दुख पाप का नाश, सुनिऐ सरा गुणा के गाह, सुनिऐ शेख पीर पातशाह, सुनिऐ अंधे पावह राह, सुनिऐ हाथ होवै सगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुनिऐ दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मुह चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत स्यो प्रगट जाए, मन्ने मग न चलै पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध,

0: सिमरन कमल बगासन
1: प्रभ के सिमरन अनहद चिनकार
0: सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार
1: सिमरे से जन जिनको प्रमया
0: नानक तिन जन सरनी पया
1: हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए।

0: पारी
1: अनपन चरण करत नहीं तर
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
0: नानक पावो सुख नेरे
1: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत हुए सुखिया
1: लाख करोरी बंधन पर है
0: हर का नाम जपत निस्तर
1: अनक माया रंग तिख न बजावे
0: हर का नाम जपत अगावे
1: जय मार गे जात केला
0: तेहर नाम संगोत सहेला
1: ऐसा नाम मन सदा त्याय
0: नानक गुरमुख परम गत पाई
1: छूटत नहीं कोट लखबाही
0: नाम जपत पार परा

0: मिथ्यारंग संग माया पेखस्ता
1: मिथ्यात्रो मोह अपमान
0: मिथ्या आपस ऊपर कर्त गमान
1: अस्थिर भगत साध की शरण
0: नानक जब जा जीवे हर के चरण
1: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने
0: मिथ्या

0: अंदर।
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
0: पाठ पैर समरो तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग,
0: नाने सदा त्याये त्यावन जोग।
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे,
0: इसे त्यागत अवल लभावे।
1: जय प्रसाद सुख से सोई जय,
0: मन आठ पै ताका जस गावी जय।
1: जय प्रसाद तुझको तुझे सबको माने,
0: मुखता को जस रसन बखाने।
1: जय प्रसाद तेरा रहता धर्म,
0: मन सदा

0: अमृत गुण गाय
1: साथ के संग सर्वस्थान गम
0: नानक साथ के संग सफल जनम
1: साथ के संग नहीं कचकाल
0: दर्शन पेट तो होत निहाल
1: साथ के संग कुलु कथा रहे
0: साथ के संग नक पर हरे
1: साथ के संग इहा उहा सहेला
0: साथ संग विसरत हर मेला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
0: साथ के संग न व्यर्था जावे
1: पार ब्रह्म साथ हृदय बस
0: नानक उतरे साथ सुन रस
1: साथ के संग सुनो हर नाव
0: साथ संग हर के गुण गाओ
1: साथ के संग न मंत्र बिसरे
0: साथ संग सर पर निस्तर
1: साथ के संग लगे प्रमिठा
0: साधु के

0: प्रसाद नानक सच कहे
1: कबू होए पंडित करे बख्यान
0: कबू मोहन धारी लावे ध्यान
1: कबू तट तीरते स्नान
0: कबू से साधक मो ज्ञान
1: कबू कीट हस्त पतंग होए जिया
0: नानक जौन पर में परमिया
1: नाना रूप जसवा गीत खावा।

0: राष्ट्रपति।
1: संत के दुखन आर्जा कटाए,
0: संत के दुखन जमते नीचे,
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन सो बाते ही,
1: संत के अते को रखे ना कोई,
0: संत के दुखन दान प्रष्ट होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संसंग निंदक पीतर,
1: संत के दुखन ते मुख पवाए,
0: संतन के दुखन काल ज्यो लवे,
1: संतन के दुखन सर्प ज्यो पाए,
0: संत के दुखन त्रिक जोन करमाए,
1: संतन के दुखन तृष्णा में जलाए।

0: चारे
1: हर की भक्त करो मन मी हर की भक्त करो मन लाए
0: मन वंचत नानक पल पाए
1: संग न चालक तेरे तना
0: तू क्या लपटावे मूर्ख मना
1: सोत मीत कुटाम पर बनता
0: इन्ते कहू तो कम न सुनाता
1: राज रंग माया बिस्तार
0: इन्ते कहू कम छिटकार
1: असा तीरा ससवारी
0: झूठा डंप झूठ पर

0: अविनाशी सुखे अपनासन
1: जन्म मर को कहा अविनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रसोए
1: तब जम की त्रास कहो कैसो
0: जब अभगित गोचर प्रवे
1: तब चित्र गोत किश पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन वादे
0: अपने आप पापी चर्जा
1: नानक आप।

0: संत जना सुने सुबचन
1: सर पे आपी राम संग रचन
0: जिन जाता तिस किए रहत
1: सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख मान
1: तन करावन हार प्रभु जाने
0: अंतर बसे बाहर पियो
1: नानक दर्शन दे सम होई
0: आप सत किया सब सत।

0: लश्करा
1: आप भला कर तू ततनी की
0: आपे जाने अपनी जी की
1: आप साज तारी सब साच
0: बोत बोता पन संग्राज
1: ताकि गत मित कहीं न जाए
0: दूसर होए तक सो जी पाए
1: फिका किया सब परवान
0: गुरु प्रसाद नानक के जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप मला

ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पाथ शाही दसवीं छपे शन त्वय प्रसाद।

0: कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात आज जना बात
1: अंजात अंडार
0: अडीठ धर्म अत ठीठ करम।

0: मन तो वहो शब्द लागहो हर सो रहो चित लाए
1: नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एस साहिब जाए
0: जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याई। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय। कर नौ निदावै ताए सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतक स्वरूप जुगो जुग अटल। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का। ਅੰਤਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ।

वै करही। पंच रागनी संग उचरही, प्रथम भैरवी बिलावली, पुन्याकी गा वह बंगली, पुन सलिखी की पही बारी, ए भैरव की पाचौ नारी। पंचम हरख दिसाख सुनाव है, बंगालम मधमाधव गाव है, ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी भांत, अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र।

मन जनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकार, ओ करे तेरा कार्ज सब सवार।

मरनो मरन कह सब कोई, सहजे मर अमर होए सोई। कहो कबीर हों भया आनंदा, गया परम रहया परमानंदा। सूरा सो पहचानिए जो लर दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मर कब होना छाड़े खेत। जुगो जुग अटल छबर छतर ताकत दे मालक, लोक अते परलोक सवार देन वाले सतगुरु दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जिंदगी दे कुछ पल सफल कर रही गुरु निवाजी साध संगत जीओ

0: सावे पुत मर बात कई धर्मी मुटियारा ने
1: हर मंदिर लई लाते सर सिंह सरदारा ने अकाल तख्त

गुरु की संगत, एक जरूरी बेनती है कि एक गड्डी बार है वो गलत पार्क हुई है, CVT 4851। कृपा करके वो गड्डी नू साइड ते कीता जावे, संगतानू परेशानी आ रही है। धन्यवाद जी।

श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसनी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर आय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौन ते आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहीं दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते भारती दर दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौह साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई देख वाही। देख के अंडर कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते। पंध पंध कटाए खोपड़ियां लहाइयां छड़खड़ियां ते चढ़े। तन आर्या नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाही। तिन्ना परातां अते वर्तमान समय दे सरबत शहीदां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी के अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रिछया रियायत। देख तेग फतेह ब्रिद की पैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान बबेक दान वसाहा दान परोसा दान तनासर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। समूह गुरद्वारियां गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार। सेवा संभाल करन दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हीण माणियां दे माणे ताणियां दे ताणे ओटियां दी ओट। सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हजूर रह रास साहिब जी दे भारती अरदास है जी। पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करना जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी। सरबत ते कारज रास करने सही प्यारियां दा मेल। जिन्हा मिलिया तेरे नाम चितावे नानक नाम चढ़ती कला। तेरे भाणे सरबत दा भला।